0: आप पढ़ेंगे सीएम टड़ी होड़ी
1: तो नहीं बच्चे टड़ी होड़ी या
2: या
3: होरी।